कला कर। मेरे चेहरे पर पहले दाने और दाग धब्बे थे। मैंने अपने चेहरे के लिए मुख्तलिफ किस्म की क्रीमें, एक्ने ट्यूब्स और मुख्तलिफ फार्मूले आजमाए, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने अरूसा शॉपिंग सेंटर से एश्मा एक्ने ट्यूब और एश्मा एक्ने सोप लिया। चंद दिन इस्तेमाल के बाद मेरा चेहरा गोरा और दाग धब्बों से मुकम्मल तौर पर साफ हो गया। अब मैं तमाम रेडियो लिसनर्स को ये पैगाम देना चाहती हूँ, अगर आपने भी अपने चेहरे पर मुख्तलिफ किस्म की क्रीमें या टोटके आजमाए हों और फिर भी कोई रिजल्ट न मिला हो, तो एक बार जरूर एश्मा एक्ने क्यूब और एश्मा एक्ने सोप आजमाइए। एश्मा एक्ने क्यूब दानों का खात्मा, खूबसूरती की

आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मुसिकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज़, आपका एहसास।

0: अच्छा तू तो खबर है ना इधर से। अच्छा उस दर चलो मिने ये पास का रुशी खान तेरे स्पेशल सलाम बल
1: ओ फाइ
0: का था आगो प्रोग्राम उर्वी कने उर्वी। अच्छा साइडो बस सलमीना देवरा सल साइडो साइडो डेरा जो था माना

everything program se message karta sabla ji chacha message takde ji oye je assalamu alaikum sweet bhajan this is me only one aaj se do cute aur shan oye kai palo khab janab kaise ho welcome to the show dear se tamam oye golden word oye gold gulab and chambeli ki tarah mere pyar se anmol aaj se do dear se tamam yo jahan ka shukriya yo jahan na message bole behada behada manana behada manana ओह ये क्या ना सब वैसे अस्सलाम वालेकुम मिजी ताको तो हाँ सुता रोग ले वैसे मिजी नन फुल बिजी है और सालन है बाहों और सुध हाँ वरु चोल गुल गुल लिस्ट रहता सालमीना फातमो जरिसाने जीर जुता बेहदा बेहदा मन्ना वैसे इट्स मी सदा वफा फ्रॉम कर कहाँ ये हेलो नाइस ब्रो हाउ आर यू आई लाइक योर शो स्पेशल सलाम टू लॉर्ड लिजिमल लॉर्ड लिजिमल तो सालमीना द वर असल नेक पर नेगा वैसे मैं क्यूट रुझान मिजी भाई वैसे राज भाई वैसे डर जुत राज भाई तेज किम दिखना एक करोड़ एक लाख सलमीना वेर कवा जिमल खा दे वर सारा उसे साइड उठे जुता मनना सलमीना दे नेक पर गाज किम दिखना आखा वर तवर सल साइड डर जुता बेहदा मनना ओ अच्छा अच्छा अच्छा दाज किम दिखना अच्छा सर दस चुके दोबारा दाज किम दिखा यूनो तुम उठेर खोर रोखवान दवर गोने दो दोबारा सरोवर वे और ये क्या ना चे सलाम भाई यमुना खान यो यमुना खान वजीर फ्राम रजमक भाई अज अच्छा सही रोटे टूल लिस्ट नतायो ची मिर्दा पर द स्पेशल स्पेशल दाउगोने दर था कि इंसला स्पेशल स्पेशल दाउगोने ची दिया का दर था कि सुमरहार विदिंग की दे स्पेशल स्पेशल दाउगोने के

0: नबी सरदार जमा खैरुल
1: अबरार। मैं हूँ अस्मा नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और चमकदार बालों का राज।
0: हर कदम दिखाओ सयो
2: गुलोनी होरिस्ता पुंदे हमाह के डेरी ज्याते हरा बेवे नु दुम रजर सिंगर टिक्शुले या होरे इन होरे मा हमाह के द डेरो कपनो क्रिक क्रिक में इस्तेमाल करल हुमा ते ही सु रिजल्ट ओ फायदा न करारा। अउ चिकला मा उरुसा शॉपिंग सेंटर ना जान द पारा इश्म क्रिक क्रिक रावल नु मा ते डेर जबरदस्त रिजल्ट राको। रज गुलोनी होरे जे हम जान द पारा रावडम इश्म क्रिक क्रिक کتاسو هم واړو چې مونږ پوندې صفا سترا او هیسته شي نو یو ځل ضروري

0: Τώρα είμαστε με ζητάρ το ούγε γέζει από τα σαπάρ σε δε τόσα έχω χαστηθεί.
1: Για να τίσε τα αρχανά από σαπάρ και έχω με ίσμα βάσινγκ πόρτερ έχω χαστηθεί.
0: Ίσμα βάσινγκ πόρτερ. Μάρα είμαι ζει μόχο κορτά national ο μάλτι national καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κέζει τα σαραγγε σαρα προβρή.
1: Βέλκολ τα αρχανά τα γιλεβε χάρβαστε μούτα χάν κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βοήβολ σε ρικρέτη ο στούλ κούρβολα να χωσούλτη.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सरब रो उदार इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासियात थी
1: तारे खाना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खासियात दागा दी ची कपड़े सा पुशली को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाखर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सा पई पवात लोसीना न खर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाई दार तो ये दाओ मोता चेरता मिला बीजी
1: तारे खाना दाओ तो दफा बने গলছে আন্দ্রনলা কি গেট জানছে বেগালে পশে মার্কেটে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ ইরসেপসার অর্ডার তে মেলা বেশি।

एशियाई पलवशा, मेरे साथ कजन भी है मरवा सलवा सिदरा एंड सपना, हम सब शो सुन रहे हैं। डेरा बनना लाजी गुल्लरा दाहो में डेर लेट मैसेज तो से शेयर कर।